0: सपना कोई सपना यू नाम सुंदर सुंदर मैं वक्त कब आई सके तुम्हें था तो मत इतना कोई नाने गौर से बने बिर्सी देव ना उस लाई प्लीज बिर्सी देव ना आए प्लीज के
1: स्टॉप इट

ड्रेसिंग टेबल डाइनिंग सेट किचन पार्केटिंग काठ को रेलिंग सोफा पार्टेशन लगायत घर अफिस होटल का संपूर्ण इंटीरियर काम को लागि ग्लोबल इंटीरियर एंड कास्ट उद्योग समझनुहोस्। प्रोप्राइटर लील कार्की फोन 98570723997 र 98475429014 ग्लोबल इंटीरियर एंड कास्ट उद्योग प्रणाली तिलोत्तमा छ गोरकट्टा।